0: सिंहाए नायगनोर्मना कुमाले कदे सिंहाए दानसा इनाए रे अमाए अंगाना दान
1: Dengar ke YFM. Segulai. Sejarah.